ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापान में कॉर्पोरेट दिवालियापन के वाकयात 2026 की पहली ششماہی में 14 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गए। गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में देखे गए रुझान की तरह नाकामियों में इजाफे का सिलसिला जारी है। क्रेडिट रिसर्च फर्म तेकोकू डेटा बैंक का कहना है कि जनवरी से जून तक के मुद्दत में 5,335 कारोबार दिवालिया हुए। ये पिछले साल से 332 ज़्यादा है और सन 2012 के बाद सबसे बड़ी तादाद है। उन पर कम से कम 10 मिलियन येन या तकरीबन $61,500 के वाजिबात थे। सबसे ज़्यादा दिवालियापन सर्विस सेक्टर में और इसके बाद रिटेल और कंस्ट्रक्शन में देखा गया। महंगाई को नाकामियों में इजाफे की सबसे अहम वजह करार दिया गया, क्योंकि कारोबारी इदारे ईंधन और खाम माल की इजाफी लागत को सार्फीन पर मुंतकिल करने की कश्मकश में रहे। रिसर्च फर्म का कहना है कि दिवालियापन का रुझान साल के दूसरे निसफ में भी जारी रह सकता है, जब सूद की शरह में इजाफे की वजह से कारोबारी इदारों को कर्ज लेने के ज़्यादा अखराजात का सामना करना पड़ेगा। तोकायदो और सानियो बुलेट ट्रेनों में मुतारिफ कराए जाने वाले निजी कंपार्टमेंट बुध को मीडिया को दिखाए गए। वस्ती और मगरबी जापान की रेलवे कंपनियां 1 अक्टूबर को कुछ बुलेट ट्रेनों में इन डब्बों की खिदमत शुरू करने का इरादा रखती हैं। इन डब्बों में केबिन के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं और आईसी कार्ड से खोले जा सकते हैं। कंपार्टमेंट्स एक रिक्लाइनिंग सीट, एक बड़ी वर्किंग टेबल, अलग से वाईफाई कनेक्शन और एक स्पीकर से लैस हैं, जिसे स्मार्टफोन से मुंसलिक किया जा सकता है। इनमें हवाई सफ़र में जहाज़ के अंदर ले जाने वाले साइज़ के सूटकेस के लिए जगह भी रखी गई है। लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग में कमी बेशी मुमकिन है। दो किस्म के कमरे दस्तयाब होंगे। एक या दो अफराद के इस्तेमाल के कमरे में सोफ़ा भी है। टोक्यो और शिन ओसाका के दरमियान एक तरफा सफ़र के लिए फ्री ऑनलाइन बुकिंग कराने पर एक कमरे का किराया फ़ी बालिग फ़र्द 42,390 येन या तकरीबन $260 है। एक या दो अफराद के एक डब्बे का किराया 60,790 येन होगा और दूसरे फ़र्द को सिर्फ बुनियादी किराया टिकट और लिमिटेड एक्सप्रेस टिकट खरीदने की ज़रूरत होगी। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक बड़ा और इंतहाई शदीद समुद्री तूफान मुमकिन तौर पर जुमे से हफ्ते तक जनूब मगरबी जापान में ओकिनावा प्रीफेक्चर के साकिशिमा जज़ायर के करीब पहुंच सकता है। जापान के मौसमियाती हुकाम वहां के लोगों पर जोर दे रहे हैं कि तूफान से महफूज रहने के लिए तैयारियां पेशगी मुकम्मल कर ली जाएं। और जापान के वजीर दिफा कोइजुमी शिंजिरो ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कहा है कि टोक्यो उनकी जानिब से जापानी फ्रिगेट पर मबनी नए बहरी जहाज मुतारिफ कराने में उनके ममालिक के साथ बढ़ चढ़ कर तआवुन करेगा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 9 जुलाई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। एक विशाल और बेहद शक्तिशाली तूफान शुक्रवार से लेकर शनिवार तक किसी भी समय दक्षिण पश्चिमी जापान स्थित ओकिनावा प्रीफेक्चर के साकिशिमा द्वीप समूह पर दस्तक दे सकता है। जापान के मौसम अधिकारी स्थानीय लोगों से तूफान के प्रति तैयारी करके रखने का आग्रह कर रहे हैं। मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार बृहस्पतिवार दोपहर तक बावी तूफान फिलीपींस के पूर्व में समुद्र में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमोत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था। ये शक्तिशाली तूफान अपनी ताकत बरकरार रखते हुए ओकिनावा के साकिशिमा द्वीप समूह के करीब पहुंच सकता है। इस द्वीप समूह में मियाको और इशिगाकी द्वीप भी शामिल हैं। ओकिनावा के मुख्य द्वीप में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहां हवा के झोंकों की रफ्तार 126 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस तूफान के साथ भारी वर्षा भी होगी। शुक्रवार से साकिशिमा द्वीप समूह में प्रति घंटा 50 मिलीमीटर पानी बरसने का अनुमान है। इसके अलावा ओकिनावा में शुक्रवार से शनिवार तक 10 मीटर से भी ऊंची लहरों के साथ समुद्र अशांत रहने की आशंका है। खागोशिमा प्रीफेक्चर के अमामी क्षेत्र में भी समुद्र अशांत रह सकता है। मौसम अधिकारी निवासियों से तेज हवाओं ऊंची लहरों तूफानी ज्वार और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। वे निवासियों को बृहस्पतिवार तक तैयारियां पूरी करके रखने तथा बारिश और हवाएं तेज होने से पहले मजबूत इमारतों में शरण लेने की सलाह दे रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि प्रशांत महासागर से लगते जापान के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में भी तूफानी ज्वार के कारण ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की में दिए हालिया बयान में जुबान फिसली है। बुधवार को अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन से इतर ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ पत्रकारों से बात की। ट्रंप ने कहा कि 2 महीने पहले अरब सागर में विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान की ओर से 111 मिसाइलें दागी गईं। उन्होंने कहा कि पोत को निशाना बनाकर लगभग 1 घंटे तक हमले किए गए। लगता है कि ट्रंप का तात्पर्य इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से था। ट्रंप ने जेलेंस्की की ओर इशारा करते हुए पत्रकारों से पूछा, क्या आप राष्ट्रपति पुतिन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? उन्होंने गलती से यूक्रेनी राष्ट्रपति को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहा। ट्रंप पिछले महीने ही 80 साल के हुए हैं। उनके जन्मदिवस से पहले व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के चिकित्सक का एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें कहा गया कि ट्रंप की सेहत बढ़िया है और वे कुल मिलाकर हृष्टपुष्ट हैं। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बताया है कि जापानी फ्रिगेट की तर्ज पर उनके लिए नए पोत बनाने के काम में जापान सक्रिय सहयोग करेगा। कोइजुमी ने बुधवार को तुर्की में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पैट कॉनरॉय और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री क्रिस पेंक के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान कोइजुमी ने कहा कि चीनी पनडुब्बी के मिसाइल प्रक्षेपण के तुरंत बाद उनका इस तरह से एकत्र होना और क्षेत्रीय हालातों पर विचार विमर्श करना बेहद सामयिक है। कोइजुमी ने कहा कि वे उनके सहयोग की तहे दिल से सराहना करते हैं। कोइजुमी ने जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल के मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट की तर्ज पर नए जहाज़ों के संयुक्त विकास की जापान ऑस्ट्रेलिया योजना के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि न्यूजीलैंड भी इस फ्रिगेट को अपने बेड़े में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जापान सक्रिय सहयोग की मंशा रखता है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में 2026 की पहली छमाही में दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या 14 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कंपनियों के दिवालिया होने के मामलों में बढ़ोतरी का ये सिलसिला पिछले वर्ष की समान अवधि की तरह इस वर्ष भी जारी है। क्रेडिट रिसर्च कंपनी तेइकोकू डेटा बैंक के अनुसार जनवरी से जून की अवधि में 5,335 कंपनियां दिवालिया हुईं। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 332 अधिक है और 2012 के बाद से सर्वाधिक है। इन कंपनियों पर कम से कम 1 करोड़ येन यानी लगभग $61,500 का कर्ज था। दिवालियापन के सर्वाधिक मामले सेवा क्षेत्र में दर्ज किए गए, इसके बाद खुदरा और निर्माण क्षेत्र का स्थान रहा। महंगाई को इस वृद्धि का एक मुख्य कारण बताया गया है, क्योंकि कई व्यवसायों को ईंधन और कच्चे माल की बढ़ती लागत को ग्राहकों पर डालने में कठिनाई हो रही थी। तेइकोकू डेटा बैंक का कहना है कि दिवालियापन का ये सिलसिला दूसरी छमाही में भी जारी रह सकता है, क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि के कारण कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो जाएगा। तोकाइडो और सानियो शिंकानसेन ट्रेनों में लाए जाने वाले नए निजी केबिन बुधवार को मीडिया के सामने प्रदर्शित किए गए। मध्य और पश्चिमी जापान रेलवे कंपनियां 1 अक्टूबर से कुछ बुलेट ट्रेनों में ये सेवा शुरू करने की योजना बना रही हैं। इन केबिन्स के दरवाजे स्वचालित रूप से लॉक हो जाते हैं और इन्हें आईसी कार्ड से खोला जा सकता है। प्रत्येक केबिन में रिक्लाइनिंग सीट, एक बड़ी वर्किंग टेबल, वाईफाई कनेक्शन और स्मार्टफोन से कनेक्ट होने वाला स्पीकर लगा हुआ है। इनमें सूटकेस रखने की पर्याप्त जगह भी है, जो हवाई यात्रा के लिए उपयुक्त है। लाइट और एयर कंडीशनर को एडजस्ट किया जा सकता है। ट्रेन में 2 प्रकार के केबिन उपलब्ध होंगे। 1 से 2 लोगों के बैठने लायक केबिन में सोफा लगा हुआ है। निःशुल्क ऑनलाइन आरक्षण सेवा का उपयोग किए जाने पर एकल सीट वाले केबिन के लिए टोक्यो और शिन ओसाका के बीच की एक तरफा यात्रा का किराया ₹42,390 यानी लगभग $260 होगा। 1 से 2 लोगों वाले केबिन का किराया ₹60,790 होगा और दूसरे व्यक्ति को केवल एक सामान्य टिकट और एक लिमिटेड एक्सप्रेस टिकट खरीदने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।